तहीं प्रकाश हमारा पहरो, पटना शहर बिखे पौलयो, तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी दा आउणा पटना दी धरती ते साहिब जी दा प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है, नाल दे संगी साथी हैरान हन अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हां, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो, अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो? कहंदे ने जिसनूं मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने दी धरती ते उसने आउणा कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनूं पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नूं मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है, दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़े ना ही दूर। जे तो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछारो, हमरे सब बैरियन संघारो, जड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता, दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आखदे ने जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाहे ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पौ जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह इहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवै तुद आहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगह पाई ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ यह विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मनोह ना विसारियन साध जना कै संग भव जल तारियन साकत निंदक दोष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं

सत्संग जी बोलो जी। वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहिपति पाचे दसवीं प्रथम भगवती समरकाए गुरु नानक लई त्याय फरंकट गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कानून त्यावैताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दाते अंतर के खालसा से बोलो जी। वाहेगुरु मेरी मनवास आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हठिया जपिया तपिया जो नाम जपिया बन सकिया देग जलाई तेग वाहे देग कंडेट की दत्तना प्यारे त्यारे की कमाई दत्ते अंतर बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंह सिंगनिया धर्म हे सी दिते बंद बंद करवाए खोपरिया लुहाइया चरखिया चले आरे नचराए गए सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके सत्संग निभाया तिना भी कमाई का ध्यान दर के बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्त सतगुरुद्वार का ध्यान दर के बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चित आवन का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब तारे छाए देव ते की फतेह बिरद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत साहब दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बूंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु गुरु की बिनवाज पंथ सदा शाही दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप पंथ में छोड़िया गलत सरदार सेवा समाज सदा अपने खालसा जी बख्शो हे रोटियां दी ओट गुरु न्यासरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोए कर जोर करो अरदास तुद भावे ता निराश एक ही मनवास जी आपके चरण कमला जरदास से आपकी बख्शिश हुई आपके चरण पितर प्रमाणी सुखम साध संपूर्ण पाठ दिता उपरंत ऐस वे संध्या समा जान के आपके चरण सोधर रहरा साध पाठ की कृपा करो हो भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगतं हिरदय सा कृपा सा करो जी अगो तो शोध के पितर बाणी टाने बार बुद्धि बख्शा जी करो मनवाज इस खुशी विच आप दिन बख्शियां दातों विचों पितर कड़ाप शादी देगा तैयार कर हादर ने दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत दसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्श करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देज प्रदेश रखा बख्श करो जी गुरु गोबिंद सिंह कृपा दतार आप दख्शिया दातों की लंघना तुर सेवा प्रवान करो गुरु महाराज आपके चरण सेवा कर रहे सारे प्यारिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाढ़ी कला बख्शो और सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावना बखता करो गरीब नवाज जी कृपा करो अमृत वे तो लैके दर से आई साफ संगत की हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ संगत का दर से तिर फुर पेटा बनाने शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु गरीब नवाज आप जा के सेवादार काका सनी सिंह दे सनी सिंह बैंस दे कामकाज की चढ़ कला वास्ते कामयाबी वास्ते बेनती करते आज परिवार वालों $101 आप जाने बैठक ने प्रवान दतार बख्शिश करो काका सनी सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो और उन्होंने कारोबार से वाद बख्शो चाढ़ी कला बख्शो सनी सिंह अपने कारोबार कामयाबी बख्श करके चरण धनवादी बनाओ और कारोबार चाढ़ी कला बख्शी करो जी गुरु जी राज कमाइया सफल करो दाते लाजमक दतार जियो कृपा करो खालसा पंथ से कौम एकता थवाक प्यार की बख्शी करके सचन रोज दास बख्शो चाना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शिया की वादा करो जी गरीब नवाज दूर दराज बैठिया लाइव कर शर्म करियां सारी संगत हाजरियां प्रमाण करो घड़िया लेखे लाओ आपने बख्शे गिरी संगत उद बख्शे संगत आपके चरण धनबाद करने शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कर चरण प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सफल करो कार्य वार साफ संगत दुभकामना पूरी करो जी गुरु जी महाराज कृपा करो सेवा प्रवान करो पुनः चुकमी बख्शो पेदर गुरुनामी बख्शा के उपरांत आज दे शाम दे कथा की बार जमता वास्ते आज्ञा बख्शो रेंदे काल सार के चरण धनवाद बनाओ शोधे दे पुत्र सवारानी के बाद दतार सही प्यारे मेरे जिले मेरा आपका नाम जतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ।

इतनी सेवा प्रदान करनी जी फुला चुका की कमान आवन सत्कार्यो भाई सब भाई परमजीत सिंह सासों पावन पित्र चल रही लड़ीवार कथा शर्म करिए जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु।

पौड़ी मन लोचा हर मिरन को क्यों दर्शन पाया मैं लख वड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुध जे वडना साइया मैं दसहो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्यो हम मैं तजहो इत पंथ जुलाइया नित सेव्य हो साहिब अपना सत संग मिलाइया सभे आशा पूरिया गुर महल बुलाइया तुध जेवड होर न सुजई मेरे मित्र गोसाइया सभे आशा पूरिया गुर मह

जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारो। तित कर गावो सोहिला सिवरे से जनहारो। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहिला। हाँ वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा दे मनुहार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमन सुमार। संबल साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सजनिया सीसड़िया जो होवै साहब से मेल। घर करे हो पाहुचा सजड़े नित पवन। सजन हारा सिमरिया नानक तेरे नावन। राग आसा मोहला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेतन एक बाबा। जय कर करते कीरत होए सो कर राग बढ़ाई तोए रहाओ। विस्वे चसिया कड़िया पहरा चेती बारी माहो होवा। सूरज को रुतन एक नानक करते के केते वेश। राग तनासरी मोहला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। भूत मलिया लो पवन चवरो करे सगल बंदराय पूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत तेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तुहे का। सहस मूरत नाना एक तो ही। सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बिन। सहस तब गंध विचलत मोही। समय जोत जोत है सोए तिसका चानन। समय चानन होए गुरु साखी जोत प्रगट होए। ज्योतिष भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। अनगिन मोहे आही ते आसा। कृपा जब दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाल वासा। राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर दंडौत पुन वड्डा है रहा।

नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अब नासी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे।

आए श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है। करुणाओ निधि आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहब महाराज सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां की आत्मक जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। निमाण्या दे माण निताण्या दे ताण ओटियां दी ओट सचे पिता वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने पार बख्शिश मेहर की अमृत वेले तो इस वक्त तक संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल किया। इस वक्त आप जी दे दीवान की समाप्ति जी की अरदास है। सोले जी के पाठ होए सुखासन की सेवा हुई पातशाह जी हुई भूलां गलतियां बख्श लैणिया सरबत संगतां दी हाजरी दर ते प्रवान करनी। इस वक्त आप जी दे पावन भगत स्वरूप सचखंड विखे ले जाण लई संगतां सेवादार हाजर ने। आग्या बख्शिश करो अमृत वेले फिर दर्शन बख्श के निहाल करना जी। जो जी आप जी दे दर ते आवे सुरा जी जावे।

अन दिन पूजै गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परिखिया। मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभै खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर ना आवै जाए। तिस ते दूर कहां को जाए, उबरै रख नहार ते आए। निरपौ जपै सगल पौ मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुचन हार। सर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ता के कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनासु। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगासु। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिगरी एकस घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट ब्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आग्या तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंड दह दिसे समाहे। तिसते भिन्न नहीं को ठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देखो, ससियर सूर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभु की सब को बोले, आप अडोल न कब हूँ डोले। सर्व कला कर खिले खेल, मोल न पाइये गुण है अमोल। सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहे ओ स्वामी ओत पोत। गुरप्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मान, करण करावन हार प्रभ जान। अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे तां करे विस्तार, तिस भावे तां एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतर्गत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए।
ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਇਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਅਲਿਪ ਤੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਊਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਛ ਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ, ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਇ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਲੋਕ

अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेखो। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्यागो द्रंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर धन के पर ले हो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वाहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत हो तो उदार, आप त्रै लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरै तिन कै साथे। सारन जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पहे सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पहे गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभही जेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहु।

सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਚੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ ਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਵੇਖੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੂਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰੰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਧੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਚੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਵਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮੋ ਸਰਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਕੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੰਪਰਮ ਰੂਪੇ
नमो योग योगेशं परम सिद्धे नमो राज राजेशं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोघीय भुगते नमो योग योगेशं परम युगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद कर्ता दूर दर्दंगा गंगोगहर्ता परम परम परमेश्वर प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अचिदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रया चंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वंग निर्नाथे नमस्त्वंग परमाथे नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदारित सिद्धं निवासी चरपट छन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वं काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराजे अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजौन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सुदय मानता एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जान नहीं जे वेद और कतेव रूप रंग न जात बासो जानी के जेव तात्मात न जा जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानी पुरति लोक चौदह के बिकह जग जापी जे जाप आदेवनाद मूर्त थाप्यो सवै जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो सोयम भवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अपूत लख अभेश अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूपम एक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप असूत अंग ही न भंग नात्मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पेक सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाक नित भाकत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही व चित मद पार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन भांग उपमा नांगन भव प्रकाश निस्तिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंकालन काल अनपूतंग आभा भंग अतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड
मित गत अखंडालिश्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा परनाड्यंड बाड्य चत्री चंतव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते के आचिज दिशय के आज भिषय के आगंज कर्म के आज भर मैं के आज लुक है के आदित सुख है के अवतूत बरने के बेभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आसुक बरने के सर्व अपरन के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बरमंग स्वरूप है के अनुपहु अनूप है के आदिदेव है के आप अपिव है के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रेहा के पाक व्यव है के गय बुल गैब है कि अफूल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजुक रही मैं कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र माने है कि सर्वत्र दाने है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेकी कि सर्वत्र पेकी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पीस है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलि मैं के परमंग फही मैं के आकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुसनल वजू है तो मामुल रजू है हमेशल सलाम मैं सलीकत मुदा मैं गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तुम्मा मैं रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम मैं रजायक यकीन है अनेक कुल तरंग है अपेद है अपांग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है पितृमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सुदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनाम मित्र पंगी त्रिकामी त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभुगत स्वरूप है छिज है छूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है अनंग

उदास है, अंध है, अबंध है, अभगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलिख है, अपेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट चंद्र प्रसाद सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणु, सर्वंग त्राणु, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग तर्मंग, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल चंतव प्रसाद नमो नरक नासे सदैवंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमातंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभाह अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रूसी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंक प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमेश है समस्तुल अदीश है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मदपार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंग आसन अपांग उपमा पार गतमित उदार जल थल मंड दिस विश्व पांडु जल थल महंत दिस विश बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गात आजिज न बात अन चंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन डट अपारा डीठ धर्म अत टीठ कर्म अन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरने जग के करने मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है थप्पा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्पायक है पभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है पुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियनादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू नास का स्वगंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम गा अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग वैभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग वैभूते सदा सचिदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र पुगते सोयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते सर्व

सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये। श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के। सूर सुरार्दन शुद्ध सुदातिक संत समूह अनेक मती के। सारे ही देश को देख रहो मत को न देखित प्राण पति के। श्री भगवान की पाए कृपाऊं ते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात विचारे। इते भय तो कहा भय भूपत अंत को ना गई पाए पधारे। जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्रीपद श्री भगवान भजे बिनु अंत को अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेकै। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेकै। पौन आहार जति जत तार सब सुविचार हजार के दिखै। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखै। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सुना दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मुआसन मातिम तंगन मान मलेंगे। श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे। वीरा पार बड़े बरियार अब चार है सार की तार पछैया। तोरत देश मिलिंद मुआसन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं जग चार लवैया। साहिब श्री सबको सिरनायक जाचक नेक सुएक दिवैया। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के वो पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र जिंद्र निराद पुजों त्रलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुवंबर साज भरेंगे। ब्रह्मेश्वर विष्ण सचिपत अंत वसे जम फास परेंगे।

और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम काबहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब है करतारा। मूर अच्छा निज कर दै करिये, सब वैरन को आसंगरिये। पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये। जो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझ जू करे हो रच्छा। अच्छा।

तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बावतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा,

सी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एके की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद करक करा कर तारा प्रजा तर्त तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पान अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिरसजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पै शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जी आस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहि शुभ काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो ताके ताव तनक मैं हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट छा छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ति ताहि उबारा जिन नर नाम त्यारु कहा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैलो उबारी सर्व ठौर मोह सहाय दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विकसकल देह को हरता दुष्ट दुखिन को क्षय करता श्री अस तुझ जपै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावे सुने मूर्छित लाय चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहसपनी जय अर्ध सहसपुन तीन कही जय भादर सुदिष्ट मीरा वारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सोईया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक न जानियो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तुए बकाने।

सच्ची बाणी बाणी तागा वो गुरु केरी बाणी है सिरबाणी जिनको नदर कर्म हुवे हृदय तिना समानी पीहु अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्चिया कवकानी हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी जे जिनका हिरलिया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ सुमाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ सुमाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पुपाए कह करता आपे हुक्मरताए हुक्मरताए वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन हो वै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हो वै कस्यो लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमर शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु वन दिन हर लिव लागै जागत रहन विहानी माता क्यों धर्म है प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है बड़ दाता जगन में आहार पहुंचावे ओस नु क्यों पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवा पे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमिया परवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया हे माया जित हर विसरै मोप जय पाओ दूजा लाया कह नान गुरु प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हर आप मुल कह मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विटहो रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सौपी है विचो आप जाए जिसदा जीव तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप मुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हरास मेरी मन वनजारा हरास मेरी मन वनजारा सतगुर तेरा सजानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक हरास मेरी मन हुआ वनजारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़ न दृष्ण लागे आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुरु मिलै जिसे आए कह नानक एहो हर रस पल बौड़ न दृष्ण लागे आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुरु मिलै जिसे आए कह नानक होरन रस विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया।

त्रिमंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सकिए, सोग दुख न व्यापे। गुरु चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुरु शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभाप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया सुजग मैं आय कै, क्या तुद कर्म कमाया। कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मैं आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक्यो शरीर परवान।

हुआ जिन सतगुरु से चित लाया, ए नित्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी। हर बिनवर न देखो कोई, हर बिनवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया यो भी संसार तुम देख दे। हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुरु प्रसादी बुझिया जावे का हर कह। हर बिनवर न कोई कह नानके नित्र अंध से, सतगुरु मिलया दिव दृष्ट हुई। श्रवण हो मेरे हो सचे सुन नैनो पठाए, सचे सुन नैनो पठाए शरीर लाए। सुनो सतबाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस मानी सचलक विडानी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सचे सुन नैनो पठाए। हार जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन मजाया, वजाया वाजा पाऊ नौ द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भाव निकना, दसवां द्वार दिखाया तैन एक रूप नाव नव निध। तिष्टांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। यो साचा सोहिला साचे घर गावहु, गावहु ता सोहिला घर साचे। जिथे सदा सच त्या वहे, सचो त्या वहे जा तुद पावे, गुरुमुख जिना बुझावे। यो सत सबना का खसम है जिस बख्शे सो जिन पावे। कह नानक सच सोहेला सचे घर गावे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख

वाणी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते होए सो

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राख हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, उठ गए मैं तेरी, ना तुम डुल हो ना हम गिरते, रख लेनी हार मेरी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, तनासरी महला पंजवा, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तौ बिद नीकी खटानी, जिसका तन मन धन सब तिसका,

तौ बिद नेकी खटानी, जी की एक ही पहमानी, अवर जतन कर रहे बहुतेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी, रहाओ

परम सम्मान जो गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ अमृतमयी बाणी श्री आसा दीवार दे कीर्तन आप जी ने प्यार सहित सरवण किए हैं। हुण समा हो रहा है अज दे मुख वाक दी विचार दा सत्कार योग ज्ञानी नवनीत सिंह जी आप जी अज दे मुख वाक दी विचार सरवण कराउणगे। फुलां दी खिमां बख्शदे होए फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

सागरो रत्नागरो हौसार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वडदाना कर मेहरम्मत साई कृपा की जय सा मत दीजै आठ पहर तुद त्याई

जो तू देहे सो कह स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, तनासरी महला पंजवा, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तौ बिद नी की खटानी। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा,

अमृत नाम निर्मूलक हीरा गुर दीनो मंतानी डिगे ना डोले दृढ़ कर रहो पूरन होए तृप्तानी ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिलानी

परम सन्मान्यो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो प्रारंभ हुए दीवाना विच हाजरी भर रही गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो जो श्रद्धा भावना प्रीत अदब सहित नितां प्रति गुरु दरबार की हाजरी भर के गुरुदेव जी दियां असीसां खुशियां प्राप्त करते हो। बहुत प्यार नाल गुरु चरणा विच बैठ के आप जिया ने आसा की वार दा कीर्तन भाई साहिब भाई सतनाम सिंह जी तिना दे जत्थे पासों सरवण कीता है। उपरंत पावन पवित्र श्री मुख वाक जो गुरुदेव जी ने अज तख्तां ते प्रकाशमान होकर के बख्शिश कीता है उस पावन मुख वाक दे पाठ नूं आप जी ने सरवण कीता है। गुरु कृपा सदका नितां प्रति आपां अमृत वेले दे दीवाना विच सतगुरां दे बख्शिश कीते हुए रब्बी वाक दी विचार करदे हां। ये पावन शब्द तनासरी राग अंदर पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव दातार जी दे श्री मुख तो उचारण कीता होया सतगुरां दे पावन अंग 671 ते 72 उपर सुभायमान है। सतगुरु दतार पिता महाराज जी दे इस पावन पवित्र शब्द दी आपां विचार करनी है। शब्द दा जो मूल भाव है केंद्री भाव है ओही है कि पंचम पातशाह जी कृपा करदे ने कि ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे दर घर उत्ते दर घर अंदर जां परमेश्वर दे पास अंतर आत्मा तो उठी हुई अरदास जिंद दी अरदास ही प्रवान हुंदी है कबूल हुंदी है सुनी जांदी है। अंतर आत्मा तो जदों कोई पुकार नहीं करदा अंदरों जिदे अंदर कोई पुकार करन दी भुख नहीं प्रीत नहीं प्यार नहीं वो बाहरों कितने भी कर्म कितने भी साधन कितने भी कई तरह दे यतन करी जाए वो सारे बेअर्थ ने। प्रीत तो बिना तुर आत्मे दे तालमेल तो बिना संसार दे विच बाकी जितने भी मनुख कर्म करदा है वो कर्मा राही परमात्मा दा प्यार नहीं मिलदा परमेश्वर दी प्रीति नहीं मिलदी वो परमात्मा जो हिरदे तो पुकारदा है उदा ही बन जांदा है। क्योंकि परमेश्वर साडे हर एक जीव दा दाता है संसार दा सृष्टि दा दाता है उन्हें सब कुछ साजिया बनाया ढाया सवारिया है। इस करके जिन्हों गुरु बख्शिश सदका गुरु कृपा सदका गुरु मंत्र द्वारा यह सोझी आ जाती है फिर उदी दृष्टि बदल जाती है उदी विचार बदल जाती है उदे जीवन विच्चों दुख सुख जेड़े ने वो गत कर जाते ने दौड़ जाते ने उदा मन दृढ़ ते अस्थिर हो जाता है। वो परमात्मा दी कृपा नाल नाम दे नाल सच्चे नाम दे नाल अपने हिरदे नूं ऐसा बन लैंदा है ऐसा अडिग कर लैंदा है कि दुनिया दी कोई ताकत उस सिख नूं भगत नूं परमेश्वर दे प्यारे गुरमुख नूं फिर डुला नहीं सकदी जिदी पुकार जिदी आवाज जिदी गल सिद्धी अपने परमात्मा नाल हो जाती। ये पावन शब्द दा भाव है। आओ गुरु कृपा सदका आपां समुचे शब्द नूं वाचन दा यतन करांगे विचारां दी आरंभता तो पहलां रसना नूं पवित्र कर दे हो प्यार सहित आखो जी।

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी दसवीं प्रथम भगवती समर्का है। गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय थे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कारण निधि आवैताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पातशी के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारधार दे अंतर के खालसा बोलो जी। वाहे वीर महाराज आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हड्डियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वण चख्या दे चलाई ते वाहे देख निड़की दतना प्यारे त्यारे की कमाई दे अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जन्ना सिंघा सिंघणियां धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाईयां चरखियां ते चढ़े आरे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे देखे सासा सिंह निभाए तिना की कमाई दे अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु पंजा तख्त सतगुरु द्वारा दाते अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चेता है चित आवन का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तचार्य आए देख देख की फतेह बिरद की पैच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन निखनान चौकियां चंडे पुंगे चुग चुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखा का मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु की बनवाज पंथ सदस्य आज दता जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुताम जिन्हों तो आप जी पंथ को छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की राहत सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया न्यासरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ प्रताप जी दया कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे दान है रास हे गीत नवाज जी आप जी के चन कामना अरदास बेनती आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हुए संगतान दर्शन दर देखे निहाल दता जी बेहद बाणियों के पाठ दता जी इस वे आपके चैनल याद दर कर सकता है। गरीब नवाज जी राग सिंह ने पुत्र गुरबाणी आशा की वार संपूर्ण कीर्तन कीते हैं उपरांत विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा विचार की कृपा करो हुई भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड पुराण गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपालता करो जी। अगो तो शुद्ध मित्र बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो इस खुशी विच आप जी दख्शियां दाता पुत्र कलाम शाह देगा तैयार करे हादर ने दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गुरु विनवाज आप जी बखिया दाता जो लग रहा है तुरस वाली प्रवान कर दी दतार अमृत वेत लैके दरते आई साफ संगत की हाजरी दर प्रवान करो कड़िया ने खिलाओ संगत का दर देते फिर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु बनाए कृपा करो खास अपन सिख कौम एकता सुभाग प्यार की बख्शी करके सच अंदोज दान बख्शो चैनल ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शी करने की प्रार्थना करो जी। गुरु की बनवाए कृपा करो दूर दारिकाने बैठी लाइव खत्म की सरण करिए सारी संगत की हाजरी प्रवान करो कड़िया ले खिलाओ तारा आपने बख्श की संगत रुद बख्शे संगत आपके चैनल धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद मैं ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कारी चैनल प्रवान करो बख्शा कमाइया सफल करो कार सब संगत शुभकामना पूरी करो जी तार मेहनत कराओ सेवा प्रवान करो उन्होंने दुकान माफी बख्शो पितर गुना बख्शे उपरंत लड़ी वास पाठ करने वास्ते आगे बख्शो दतार रेंदे कार सवार के चैनल तुरंत बनाओ शुद्ध और पितर सेवा लैने के बाद दतार से ही प्यारे मेरे जिले में अपना नाम देता है नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आगे रहे ना ख्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚਲੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਲੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ

सुख निदान हर अलख स्वामी, जी जंत तेरी सरनाई, नानक नाम मिले वड्याई गौड़ी।

गुर प्रसाद नाम मन लागा, जन्म जन्म का सोया जागा। अमृत गुण उचरै प्रभ बाणी, पूरे गुर की सुमत प्राणी। प्रभ सिमरत

मंत्र तंत्र औखद पुनः चार, हर हर नाम जीव प्राण आधार। साचा धन पायो हर रंग, दुत्तर तरे साध कै संग। सुख बैसो संत सज्जन परवार, हर धन खट्यो।

दुख न जमाने। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, धन सती दरगह परवानिया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, हम तनवंत पा

छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बिचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां।

जो जन पर सो जन परवान, जाके हृदय वसै भगवान। गौड़ी महल्ला पंजवा। एक स्यों जाका मन राता, विसरी तिसै पराई ताता। बिन गोबिंद ना दिसै कोई, करन करावन करता सोई। रहाउ मन है कमावै, मुख हर हर बोलै। सो जन इत उत कतह न डोलै।

भाव नेत्र संतन का दर्शन पेख प्रभ अविनाशी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मिटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दुलभ देहे नानक निस्तार गौड़ी महल्ला पंजवां।

कौ माया अग्न न पूहै, मन तन मुख हर नाम दयालु, नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महल्ला पंजवां। छाड़ सियानप बहु चतुराई, गुरपुरे की टेक टिकाई, दुख बिन से सुख

जो तुद भावे सो ही करना राव सोग हरख मैं आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभ भाणा अग्न सागर महाव्यापै माया से शीतल जिन सतगुर पाया राख ले प्रभ राखन हारा कहो नानक क्या जंत विचारा गौड़ी महल्ला पंजवा तुमरी कृपा ते जपिए नाऊ तुमरी कृपा ते दर गह थाऊ तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोई तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहा तुम मन वसै तो दुख न लागै तुमरी कृपा ते भ्रम भउ भागै

तहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती से साहिब जी का प्रकाश होया, कहते ने पीर भीखण साहब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने तीन महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग यात्रा करया करदे सन, तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी, ते नाल कहंदे ने दो कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए, ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हाथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता, ते बाएं गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावें अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता, दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान, आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

सोहित निशा प्रवान करना जी अगला जो प्रोग्राम है मान योग सकत्र साहब जी को आप जी श्रवण करो आप सारिया संगतान तन तन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन प्रकाश पुरब दिया लख लख बधाइया लख लख बधाइया उला चुका छीमा पत्ते साझी करो जी वाह